0: पड़ेगा कि मुझ पर कोई एहसान न करना।
1: पिक्चर आ रही है ना,
2: कौन सी?
1: बॉडीगार्ड। उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है।
3: अच्छा, हीरो कौन है उसका?
1: तेरी।
0: मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना।

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

0: साह से। वाई लवता की नुनी में वाहक तके ए वाहक ता मिहारु आ अडका आ रूह काय ए फोरिया ए जोश गेंगुस्तनी मुलिं एहिं दुनिया का
1: दिवाली ऐसा क्या वाइट तू जाऊन उठन बिठन लावनी की तू तेरे भाई के राड़े नहीं देखा तू इधर कच्चे तू
0: हाँ वो अधे रिमिक्स की बदले नो एक हमको लव एक निस्ते आ देरु में को में हो मत वही के मिंदरु दे जहार रिपीट अंगार दो हुगेरे दिहे जहार अधे बुद्ध दो हुगेरे बार जहार
2: नॉक नॉक तेरा बाप
3: का Version 2.0
4: Version 2.0

0: 사 그렇지 고량이 되면 응가리가 응가리
1: 사 보이겠네 미오래네
0: 일단이 더
1: 사 보이겠네 완노마니 니우마메 나이라카노 아까 다칼레베니 랑가라도
0: 아 나가 에카니스 오래니 고바 엔 쿠린데
1: 미가리 게카냐 민디
0: 엔다
1: 미가리 게카니
0: 네 카니다 ओ मगे लवा आने के तो एक जैसा सनी जैसा
1: आ लवा हो दार ने नो आशिकी के लवे क्या बोले तो
0: आ पुरी का आशिकी
1: मेरी जिंदगी इंगे ते लवा किया लंग
0: हाँ
1: इलवा किया लंग इंगे है ये
0: इंगे ना
1: किया ला करने इंगे तो
0: आ
1: एक हमारे रीति लवे इंगे हमारे गिनेंगे डू हावलें तो
0: आने पुरी का हाल में रंजमान का दावत नहीं
1: मेरी आशगी तनुनी मेरी जिंदगी त मेरी आशगी ये फेनी फॉर मी होती
0: एंड तो मेरी जिंदगी एला वने मेरी इला
1: ना आशगी आशगी फिल्म हम हेन जहेगे
0: आ नंगल जा हे रंगल वाने
1: आ मसल एने
0: आ ओके
1: एहे म वरंग उफा बेरे दो हकन एदे मकी वाला नीगे निउमा या वाकी वेला फमिहा हिसाबुन निउमा के लवे को कुरिया दार निउमा के लवे को कुरिया दार शो विस निउमा लवा को तो जेही फेमी होती मेर के शो हमा बैवेड भी हुरी हाँ फारात तक अधि मैसेज कुरी हुरी हाँ फारात तक विस हमा वारा बड़ा शुक्रिया वारा उफा वेरी दुआ कंगे दें वाकी वेला नमस्सलामुअलैकुम

0: Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
2: Divahi FM. No adhiya ekam megahertz.
3: Divahi FM unge nisteni.
4: Viral wife.
5: Eki goikoto magpul vishwa lavataka. Eki chart tauge emme top lavataka. Adi minunas eki platform tauge emme viral lavata.
4: Viral wife.
6: Komme hafta egeves aditya dohoge mendur fahu deej jahairu repeat homa dohoge regandu egar jahairu adi angar dohoge mendamu bar jahairu
3: viral wife hama ekani modi heke megahertz divahi fm
7: दत्ता कोलम नोरे में गोंडी गई शींदे आहारें कोलम होरे लफाना दत्ता ही शींदे
8: हाँ जंगले खोको बड़ा बड़ा शुक्रिया
7: कुद्दे वे कुड़ा कुड़ा है वो कमकों ऐह मी है गेदा तोरो अमावे उफावेरी वेदाने
9: मी अब्दुल्लो नाशिफ ताती जोशा फोरिया को अडोसो मुंतिया गेंदवनी दिवे ही एफएम

0: सांस से। बाय लवता की नुनी में वाहक तके। ये वाहक ता मिहारु आ अड़का आ रूह काय। ये फोरिया ये जोश किंगुस्तनी मुलिं एहिं दुनिया का।
1: दिवाली ऐसा क्या वाइट था तू जाऊँ उठना बिठना लाऊँ ये की तू तेरे भाई के राड़े नहीं देखा तू इधर कच्चे तू
0: हाँ वो अधे रिमिक्स की बदले नो एक हमको लव एक निस्ते आ देरु में को में हो मत वही के मिंदरु दे जहार रिपीट अंगार दो हुगेरे दिहे जहार अधे बुद्ध दो हुगेरे बार जहार
2: नॉक नॉक तेरा बाप क्या
3: Version 2.0
4: Version 2.0
5: Komme doi paki tafati husase Komme husase gifatuga etanghas kudata ke foroi favi
6: Loipa ufala hayatuge ujala kan ಹುದುಕುಲಾಗೆ ಸಾಫುಯ್ ಬಾರತಕು
5: ಇಕನವರಿಕಮ ವಕಿಫುಮುಗೆ ಫುಂಗಸರ್ ಕಳುಕುಲಾಗೆ ಅಸರುಗದ ಇಬಾರತಕು

कहने को तो है ये दो लफ्जों की कहानी, बसर कर जाती है इसमें तमाम जिंदगानी।

गम और खुशी का हिसाब रखे तो जिंदगी बहुत छोटी है। बहते लहरों की गिनती कभी आसान होती है?

0: ती एक बैंड को दिन गुड़ माफा होगा देमी होंगे कौन आने ती ए ए ती देमी होती एक वाकिंग ती दाने ट्रिप ट्रिप को से इतना गंदा लाती ये सा कुल्ले का गंदा भी है ती ए वाकिंग के दा ऐसा मरी इतना गंदा प्रतला लाती
1: वारस साड़ी वारा बराबर इंगे